मिनुम वा कंकशवरी अखुन थके कम गए फाहे तियबै मी होंगे दे अखुन दे मेदु तियबै मी हूँ सुलह कुराश आदि तियबै मी हूँ अल्लाह तक्वा विरवाश ए तियबै मी हूँ ना रहमत लिबुम ठके।

0: sorry.
1: solo me बोले नहीं
2: हाँ ये चलो
1: मेरे
2: बात
1: मेरे तो माँ दे आज के ना तू लगा ने क्या बोले
2: अरंगा फोन में नहीं लिया त्या का निम्मे पे नहीं
1: आ रहा हूँ मी मी मी प्रोग्राम निम्मा फोन नहीं नो दिले नहीं मेरे
0: मरी तो ना भी माँ जगह का माँ जी ने नेंगे को तो कबीस
2: नहीं हर मैं वो बाले में एका
1: कोबा
2: बाले आ रहा तो
0: मनी
2: हाँ
1: अरे माजी इतना के पुरुषों तेरे शिक्षक माँ को तर नगुलो दुन तेरी का उड़ना फरार तेरे का उड़ना का मग गबो करन तो
2: वाजीपा के पुरुषों तू
1: एकाशी के माँ को तर नगुलो दुन तेरी का उड़ना फरार तेरे का दिवे का मग गबो करन है
2: नू ने यह ये नू होंगे तो
1: कबो मेरे मस्सा दे कि कुदिन नू भी नहीं था कुदिन तैयार नू नहीं था नू नहीं
2: दीजेंदी गोतक
0: मरम कौन लवे तो मेरे जहाँ दें भी
2: मेरे ने जहाँ भी जहाँ मुने एक दिन ना एक ना मतलब जहाँ भी लवा
0: नूने मे मे उन कुड़ कुड़ कुड़ कुड़ मस्से दिमाग ने मिहारो एक को जो गोसा एक को जो कैस इसी ने जहम भी मा
2: हाँ हम मेरा अंगारवान है हम मिहारो अली रमेश गरीब चिल्ला हुए जहाँ
0: अधी रमेश गरीत लवे
2: मारे
0: तक कब वाजीफाई को तुम क्या होती उड़ने
2: नो वाजीफाई का मारे तक का नो दे मारे तक उड़े नहीं हम दारिम वाजीफाई फोन में आगे कोई बाला
0: हाँ कोई बेल म की
1: एवज वाजीफाई नो तो हम
0: की हाँ बड़ो वाजीफाई
2: वाजीफाई आधा कुरो बोल मिला
0: ना हाँ निम्न तिया तिया बुरम मोलो तिया बुरम बरो को तो वाजीफाई नो ना के फाई
1: आधा
2: ए वजीफा दा कुरो बोल मिला ने
0: ये मेरे को वजीफा के मैं मत तो कम के वजीफा
2: हां
0: कुरी हां को तो कुम दे दुनिया में इस बाजर फर्क है नो इन हम जी हूं एक इंतहा है नो मरता
1: ए मरता ते अदा कुरा वजीफा के मुत्ता मांगी तो मी उनते तमरी नु कुरम के वजीफा अंगन के बणानो
0: ते दे
2: इराद कुरे बे तमरी नु कुरान मी के देरवन मी यार गांव में ही नाम देवर के मी मैं यार दारिन तमरी नु खोगिन दो एमी हूं
0: हां
2: दिमाग तुम्हारे बीच नहीं क्या रखी आका बीच आदि में दिमाग कर लिया
0: हाँ ए दिमाग तो गने मूड आदि में दो को दे सूचना लिस्ट रंगल वार दो
2: हाँ ए मूड आदि में दिमाग कर लिया रंगल
0: वार रंगल वार दो हाँ अहम भी हम मस्से नहीं का दवा हास कर लेवा कुंभ का दवा हास कर ला
2: दवा हास कर ला नहीं हम कि देवे पुरुल्ला अधि हास को ओ माजिना से फाइजर फाइजुआ से फाइज फाइजु की मैं कहाँ कौन से फाइजी दो
0: फाइजी
2: हाँ फाइजी यार
0: ये ती ये ती आ नमे क्या इंगे ती ती बाहर का ती फ़ाहुं देख को मंडना इंगे
2: आ फ़ाहुं का ती ये ना ये गुलाम है दक्षानी
0: आ रहा हूँ ना फाइजी ये था हो दें
2: हाँ दें ना मोना को बोले ती होंगे हम हुरी है बेकार जुन्ना कबल
0: जुन्ना
1: ऐनी मुनी आ
3: दिवे एफ एम के खुम्मे गडियरे के फैशन दिवे अमिल्ल रागे के लवेकु

0: ना एंगे था स्ट्रेट आउट ऑफ कॉम्प्टन मिलावेगा बेणु को फवा पस्मगा गेनस्तीफा वा मौलू तो की एरुगे आम म्यूजिक बलायर वर तफात अदि बायफरायत का बलागण उंदगु कंत तके मिलावेगे जरिया ए फन्नानु किया देनी एमी हु नफेन हगीगे फगीरु कमा कुशुगे वेट्टा कॉम्प्टन गे आदागे दिरियुलु मिलावेगे मसला बोडुवे अमेरिका गे एफबीआई एन एमी हु गे रिकॉर्ड लेबल लंग इंजार गे सिटी वेस फणुवे नमावेस एकमु के सबबु मे ग्रुप के मकबूल कं इतुरु वेगें दिया
1: You are now about to witness the strength of street knowledge.

0: और मैंने दिल्ली भी फिर वहाँ के कि मैसेज की वारा कुरु मैसेज इंगे तो मी मैसेजेस और मैंने हिस्सा को फपनी हाथे तीने एकिंग हाय नुए फाय नुए मी नंबर टेक्स्ट मैसेज कुं मादो लव्स तके एकमको बुनेते बेनु भी खुरिहा वहाँ के और हितुं मी मैसेज को फपनी पुनेती फ
1: आदाग मतिं आदिवस पायफार उदेजाड़ सायब हेट्टे एकां हिंगिफाहुं अम्मस वेज्जे एकां हुट्टेनी कोंगिरकु कामें आहन्न करनेंगे आहरें बेनुं भी हामें